राजा धर्म द्वारे गावन तुदन चित गुपत लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदन ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे।

आई। रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई। कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई। ज्यों

रहाओ। सब सुरती मिलो सुरत कमाई, सब कीमत मिलो कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहण न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सातो सब तापो सब चंगे आई।

तेन तुर मस्तक लिखिया लिखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उदम जा आहर हर जियो परया सैल

मन मह सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल तरया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारावरिया।

प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा। हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अन

उपसमासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सल

मोहे बचावह। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सेखो सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन को आज संगरियै। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा।

हरे मारिया है। आप हाथ दाए मुझे उबरिया है, मरण काल का त्रास निवरिया है। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जु करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दास कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर भीषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।

हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो, काट काट पे अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत।

अंडज जेरज से तज किने उत पुज खान बहुर राच दिने कहूं फूल राजा हवाय बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकठा सक्री श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दोष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तव सरनी परे तिनके दोष्ट दुखित हवा मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार ते

मन वसावै। नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाईया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहौ जिस दिया ए वडिआईआ कहे नानक सुनहो संतो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर

पावड़ी। तिथे तू समरथ जिथे कोए नाहे, ओथे तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड़ जाहे। पौ जल बिखम असगाहो, गुर शब्दी पार पाहे।

सत्संग जी बोलो जी। वाहे गुरु वाहे गुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहेबा श्री भगवती पाशे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास हो सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय से सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कारण उन्हें दयावत आए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह के पुत्र आत्मक स्वरूप साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठदार अंतर के खालसा से बोलो जी। वाहे गुरु गरीब नवाज आप जी के पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वन छकिया देख चलाई ते वाही देख निढ़ की दतना प्यारे सत्यारे की कमाई दत्ते अंतर की बोलो जी। वाहे गुरु जिन्ना सिंघा सिंघणिया धर्म हे सही दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया के चढ़े हर नचराए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा किसी तो किसा संघ निभाया तन्ना नहीं कमाई दाते अंदर की बोलो जी। वाहे गुरु पंजा तख्त गुरुद्वार दाते अंदर की बोलो जी। वाहे गुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेताव है चित आवर का सद का सर्व सुख होवे जहां जहां गुरु खालसा साहब रचरियात देखते की फतेह बिरद की पैच पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बुरबाले बोलो जी। वाहे गुरु सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। वाहे गुरु सिखा दा मन नीवा मत उचे मत पद के राखे आप वाहे गुरु गुरु गरीब नवाज पंथे सदा सहाय दता दियो गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जी पंथ छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन की दात सेवा संभाल सदा अपने खालसा जी बख्शो हे न्योटिया की ओट गुरु न्यासरिया ने आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ उतार दियो दोए कर जोड़ करो अरदास तुद भावे ताने रास हे गरीब नवाज जी आप जी के चरण का उन्होंने अरदास इंतजार जी आपने बख्शिश की दिया गरीब नवाज जी आपके चरण पितर रवाणी सुखमणी साहब ने संपूर्ण पाठ में दिता है अपरंत आज में संध्या समा जान के आपके चरण शोधदार रहरास शब्द पाठ की तेरी कृपा करो होइया भुला चुका जी माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी शोध के सचखंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगतां दी हिरदियां जो स्थानिक बालता करो जी अगो तो शोध से पितर बाणी टाणी बल बुद्धि बख्शिश करो की रवाज इस खुशी में आप दी बख्शियां दातां विच पितर कड़ाप शाह जी देगा तैयार कर खाद दार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सात संगत दे असना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी दा पितर नाम जपे बख्शिश करो दतार जी दुखां कलेशां रोगां दा नाश करो सुखां दा प्रकाश करो देश प्रदेश रखिया बख्शिश करो जी कृपा करो दतार आप जी बख्शियां दातां जी लंगरां तुट सवारियां प्रवान करनी गुरु की बिना ही बख्शिश करो दतार जी हर जे चंदा लोड़ी सके सबनवान एक ग्रंथ साहब सच्चे पाठ जी आप भी बख्शिश हुई है आज नाम दिन है जेठ का महीना जरा दतार आप भी कृपा की पहला गुरु महाराज जी दतार पजा जी साग का महीना आपके पानी अंदर सुखा का बतीत होया कृपा करो जेठ का महीना चढ़िया चढ़ा महीना भी सुखा का बतीत करना समझ सच्चे पातशाह जी सब संगतान शुभकामना बख्शिश करना सारिया संगतान चांदी सुख चांदी चढ़का करनी सारा महीना सुखा का बतीत करना आंसा उत्साह बख्शो हर प्रकार की रखा बख्शो दतार कृपा करो संसार भर में सुख शांति बख्श करने की बालता करो जी गुरु गरीब नवाज बख्श करो दतार अमृत वेत लैके दरते आई साफ संगतान की हाजिर दर प्रवान करो घड़िया ने खिलाओ संगतान का दर से तिर फिर बेटा बनाने शुभकामना पूर्ण करो जी गुरु जी बनवाए आज संग्रह का दिन जान के बेहद पुराना वालों बेहद माया बेहद रसदा आपके लगने देखा सुने मंदिरों वास्ते आदमी प्रवान करो कमाइया सबर करो शुभकामना पूर्ण दतार साफ संगतान दिया शुभकामना वास्ते माता पूरी करो जी गुरु जी बनवाए कृपा करो दतार दर्द आई संगतान की हाजिर प्रवान करो घड़िया लेखे लाओ दर कृपा करो समाप्त संगतान के कदम लेखे लाने यात्रा प्रवान करनी सारे पुराण आप तंदुरुस्ती सुख शांति चल बखिश पालता करो जी गुरु गरीब नवाज मेहर करो दूर दराज कर बैठिया लाइव कृतज्ञ श्रवण करियां सारी संगतान की हाजिर प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ सतार आपने कृपा जी संगत उदो बख्शे संगत आपने जाना धनबाद कर दिया शुक्रिया अदा कर दिया बेअंत माया ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा संगत संगत माया पेटा कार्य चरण प्रवान करो बख्शा कृपा जी कमाइया सबल करो कारोबार के मदद
ਸਤਾਰ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਮਾਧਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨਵਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਦਰ ਤੇ ਹਰ ਹਾਜ਼ੀ ਪਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਰੱਖੋ, ਸੁੱਖ ਰੱਖਾਲੀ ਬਖਸ਼ ਸਤਾਰ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਭੁੱਲ ਰੰਗ ਮਾਜ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਣ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹਮਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਗਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੰਨਾ ਦਿਨ ਮਦਦ ਸਤਾਰ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਿੱਤਰ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਸਤਾਰ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਤਾ ਹਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ, ਕੋਝ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ

0: सुनिहार सत्रियाकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। जे तू तुठा कृपा निदान, ना दूजा वेखाल। एहा पाए मूं दातड़ी, जिते हिरदा रखां समाल। अंदर सचा ने हो लाया प्रीतम आपने, तन मन होए निहाल। जागुर देखा सामने, सतनाम

इन्हें खासी आप संतान प्रमाण कर लेने की आओ अगला समय सत्कार योग पैसा पैसा नाम सिंह जी आप जनों कीर्तन राही ज्ञान करने बड़े प्यार सत्कार बैठ के आप जन समा कीर्तन नुसरण करने की कृपालता करनी जी देव असीस फते बुलाओ वाहे गुरु जी का खालसा वाहे।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ भिखै भिख खाय, माया मोह परम पै भूले, माया मोह परम पै भूले, सुत दाराशों प्रीत लगाय, एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गोर रामदास राखो शरणाई।

टीके रोज वेखना। फिर अरदास करी कल मैं इनू छेड़िया नहीं अगे, क्योंकि मेरे मन से मंत शब्द जड़ा है एदा विद्वान की अर्थ करनगे। पर जदों कथा करदे आ तुहाडी सुरत विच, मैं हंकार च नहीं कहिंदा, तुहाडी सुरत च कोई अर्थ होर गुरु बख्शे वो शेयर जरूर करिया करो, क्योंकि गुरबाणी अगाध बोध है जी। आपां दावा कर दिए भी ज्ञानी शब्द लग गया जी, संगत सुन आ गई, नहीं नहीं नहीं प्यारियो, ये तो सतगुरु कृपा करे। मैं एक बार कहा सी कि गुरु हरगोबिंद साहब अर्थ किते सतगुरु ने, जपजी साहब दे अर्थ किते भाई करमचंद जी दे कहन ते, कश्मीर किते महाराज जी। जपजी साहब की जदों अर्थां की संपूर्णता हुई तो उस वक्त महाराज जी ने ना जी संगत ने शुकराना करना सी, भाई करमचंद जी ने कहा सतगुरु आप जी का शुक्र, आप जी ने जपजी साहब दे अर्थ किते, तो मैं बेनती करांगा तुसी प्रबंधक वीर बैठे हो जेड़ी बाणी रूटीन च पढ़ी जाती है ना भाई साहब तुहाडे कोल आ दो तीन कथा वाचक ने मेरा ख्याल, तुसी एक काम करिया करो, मैं बेनती कर सकना कि सिर्फ अखरी अर्थ ही संगत नूं दसी जाओ। मान लो आपां नूं घंटा समा मिल गया तो आप चार अष्टपदियां दे अखरी अष्ट कर ली, डिटेल च ना जाइए क्योंकि संगत ने कथा दे करनी नहीं, पर घट्टो घट जो बाणी आपां पढ़ रहे हां वो अर्थां दी समझ पाए। उत्थे उन्हां कहा महाराज आप जी का शुक्र आप जी ने अर्थ किते, सतगुरु ने जिहड़ा उत्तर दिता वह गुरबिलास है, बोर बहुर श्री मुख बचन पखानो अर्थ जाहे गुरु नानक जानो, अर्थ जाहे गुरु नानक जानो। हुण मेरी फिर बेनती है, मैं अर्थ कर जांगा कि तिथे खंड मंडल वर पाण जे को कथा ता अंत अनंत, तिथे लो आकार जिवजु हुक्म तिवै तिवकार, वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा गुरमुखो। ये अर्थ मैं कर दिते ने, पर गुरु साहब जिस थां ते गल करदे पया, जिस खंड की गल करदे पया, ये बौद्धिक ज्ञान नहीं, ये वो रूहानी ज्ञान है जिहड़ा सतगुरां दा आप अनुभव है, जिस सच खंड वो मानदे पए। इस करके मैं बेनती की जी, ये कुंचर मैं मंत, ये केले का जंगल है शरीर साडा, मन ए हाथी है ते नशे च मदहोश है, मैं मंथ एद अर्थ हो गया नशे विच शराब विच। अगे महाराज कहिंदे हुण ए पुत्र गया, पुत्र गया शब्द पता है ना जी, क्योंकि बड़ा पुराना शब्द पुत्रिया, जदों हाथी पुत्र जाए परवाह नहीं करता हुंदा, ए बंदा पुत्रिया बंद काबू नहीं हुंदा, दुनिया मार जांदा सारी, वह नशे च आया हाथी पुत्र गया हुण, ते महाराज कहिंदे हुण इहनूं काबू किवें कीता जाए। अंकस ज्ञान ये याद रखियो, दा पाठ आपां ज्ञान ही करना है। अंकस अंकस दा अर्थ कुंडा, लोहे का कुंडा जिदे नाल हाथी तुरदा, ज्ञान रतन है, इहदा अर्थ के जिहड़ा कुंडा है जिवें लोहे दे कुंडे नाल मस्त हाथी काबू आ जांदा है, इसे तरह सतगुरां दा दित्ता होया जिहड़ा ज्ञान है रतन। हुण वैसे रतन दे अर्थ श्रीमान भाई वीर सिंह जी ने कीते ने बैराग, उन्हें रतन दे अर्थ बैराग किए, इहदा मतलब ज्ञान अते उपरामता दा कंडा, इस मन नूं काबू कर ली। अंकस ज्ञान रतन है खेवट, हां खेवट दा लफ़्ज़ी अर्थ मलाह हुंदा, हाथी ते मलाह दा की काम जी, देखो क्या गुरबाणी की खूबसूरती है। हुण इत्थे अर्थ मलाह नहीं करने, इत्थे अर्थ महावत करने ने, क्योंकि मलाह भी तां चलांदा है ना बेड़ी नूं, मला बेड़ी नूं चलांदा है, महावत हाथी नूं चलांदा है। सतगुरु कहिंदे है तां शराब दे नशे च धुत होया मन हाथी अखरी अर्थ कर रहे, केलियां दे जंगल च पै गया। गुरु दा दित्ता होया ज्ञान एक कुंडा है, ते खेवट दा अर्थ मला, उंज इहदे भाव अर्थ है महावत, बिरला संत, कोई टावा टावा महापुरख गुरमुख है जिहड़ा गुरु दे ज्ञान दे कुंडे दे नाल इस पूतरे मन नूं काबू कर लैंदा है, सारे नहीं कर सकते। यह सतगुरां ने अज बचन किया, थोड़ा जिहा आपां इस दी कथा जरूर करनी है क्योंकि कल कीती नहीं, क्योंकि सारी गुरबाणी जिहड़ी अध्यात्मकता दा संबंध मन नाल है। उंज सच दसा मन तो बिना बंदा चोरी भी नहीं कर सकता, मन तो बिना पाप भी नहीं कर, सारे काम मन ही करता है। गुरु साहब ने गल मुका दी, ममा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन नूं साध्या जाए ते सफलता प्राप्त हुंदी है। इत्थे

श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे, गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या से फिर गरबास ना परिया रे।

परवासा गुरपुरा पेट्यो वटपागी मन है पया परगासा कोई ना पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा अपने सतगुर के बलहार आगे सुख पाथे सुख सहजा कर आनंद हमारे रहाओ अंतरजामी करने हारा सोई खसम हमारा निरपौ पे गुरचरणी लागे एक राम नाम आधारा सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ है पी हो बनहारा कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा वडी वड्याई अचरज शोभा कारज आया रासे नानक कौ गुरपुरा पेट्यो सगले दुख बिनासे वडी वड्याई अचरज शोभा कारज आया रासे नानक कौ गुरपुरा पेट्यो सगले दुख बिनासे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम।

हर जेठ रंगीला तिस तनी जिसके पाग मथन जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन आपन लिया जे मिले विछण क्यों रोवन।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर घर नौ निध आवै ताए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय। सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी। हे गरीब नवाज सचे पिता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ओ महाराज आप जी ने अपार बख्शिश रहमत कीती है। सतगुरु जीओ अमृत वेले तो लै करके इस वेले तक आप जी ने अपने सिंघासन ते प्रकाशमान हो करके संगतां नूं दर्शन दीदार बख्शे ने। सतगुरु जी आप जी दा कोटान कोट शुकराना है, धन्नवाद है जी। आप जी दे भाणे अंदर चार पैर दिवस सुख शांति नाल बतीत होया है। इस वेले रात्रि दे दीवाना दी समाप्ति कीती है। सतगुरु जीओ आप जी दे सुख आसन दी सेवा सोहिला साहिब जी दे पाठ कीते ने। होईयां भुल्लां बख्श देणियां जी आप जी कृपा करो। अपने सुख आसन स्थाना विखे चल के विराजमान होवो। संगतां नूं खुशियां बख्शो। रात सुख शांति नाल बतीत करनी। अमृत वेले फिर संगतां नूं दर्शन दीदारे बख्शिश करने जी। सही प्यारे मिलने जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेते आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा।

ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਜਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇਰੇ ਰਾਮ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਵਾਜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 775 ਅਤੇ 776 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਨ, ਸਫਲਿਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਲੋਕ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਦਿ ਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਜੁਗਾਦਿ ਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵੈ ਨਮੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੀ ਮਿਟਾਵੋ, ਸਿਮਰੋ ਜਸ ਬਿਸੰਬਰ ਏਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾਖਿਅਰ, ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਏਕ ਆਖਿਅਰ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵੈ। ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੂ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰੂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਟਰੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਉ ਨਿਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹ ਮਾਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੋ ਫਲ ਫਲਾ, ਸੇ ਸਿਮਰੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਛ ਸੂਜੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਧ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਤਨਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ।
ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਬੇ ਮੋਹਤਾਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸਦ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸੁਖ ਬਿਹਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਬਸੈ ਹਰ ਨੇਰੇ। ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬਹੁ ਨ ਝੂਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿ ਸਮਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨ ਹਦ ਝੁਨਕਾਰ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ। ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇਦ ਉਪਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਜਾਤੇ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਤਰਨਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ, ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਹਿ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੋਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਤਹਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ। ਜਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੈ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ। ਅਨਕ ਪੁਨਹਿ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰਹਰੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧ ਨਾ ਪਰੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸ ਤਰੈ। ਅਨੇਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿੱਖ ਨਾ ਬੁਝਾਵੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਆਗਾਵੈ। ਜਿਹੇ ਮਾਰਗ ਇਹੋ ਜਾਤ ਅਕੇਲਾ, ਤਹਿ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਛੂਟਤ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹੀ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਤੈ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ। ਅਨੇਕ ਬਿਘਨ ਜੈ ਆਏ ਸੰਘਾਰੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤਕਾਲ ਉਦਾਰੈ। ਅਨੇਕ ਜੋਨ ਜਨ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਮ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ। ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲ ਕਬਹੁ ਨ ਧੋਵੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਖੋਵੈ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਮਨ ਰੰਗ, ਨਾਨਕ ਪਾਈਏ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਊਹਾ ਸੰਗ ਤੋਸਾ। ਜਿਹ ਪੈਂਡੈ ਮਹਾ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜੀਆਰਾ। ਜਹਾ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨ ਸਿਆਨੂ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਹਿ ਨਾਲ ਪਛਾਨੂ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ, ਤਹਿ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਸ਼ਾਮ। ਜਹਾ ਤਿਰਖਾ ਮਨ ਤੁਜ ਆਕਰਖੈ, ਤਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਖੈ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨ ਨਾਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਜਨ ਕੋਟ। ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਸਾਧਕ ਮਾਤ। ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਕੀ ਨੋਦਾਨ। ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਰਤੇ ਰੰਗ ਏਕੈ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤ ਬਬੇਕੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭੁਗਤ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਬ ਪਰੈ ਨਾ ਭੰਗ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਭੋਗ ਜੋਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਛ ਨਾਹੀ ਬਿਯੋਗ। ਜਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰ ਹਰ ਦੇਵਾ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲਕ ਜੀਨਾ, ਹਰ ਧਨ ਜਨ ਕਉ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ। ਓਤ ਪੋਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ, ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਬਹੁ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਗ ਕੇਤੇ ਤਰੇ। ਪਾਰ ਜਾਤ ਇਹੋ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕਾਮ ਤੇਨ, ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ। ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ, ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਦ ਵਸੈ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ। ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ,
नाम तुल कश आवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए सलोक। बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान, योग अभ्यास कर्म त्रम किरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया। अनक प्रकार किए बहु जतना, पूर्ण दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वरत नेम करे बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड प्रथमी फिरे चैर जीवे, महा उदास तपीसर थीवे। अगन माहे होमत प्राण, कनक असव है भरपूम दान। नियोली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमक निमक कर शरीर कटावे, तौ पी होमे मैल न जावे। हर के नाम संसर काश नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करे दिन स अर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही कौ बहु साधना करे, मन ते कबहु न बिखिया टरै। जल तो वै बहु देह अनीत, सुध कहाँ होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच। बहुत सियाणप जम का भौ व्यापै, अनक जतन कर त्रिशन ना त्रापै। भेख अनेक अग्न नहीं बुझै, कोट उपाव दरगह नहीं सिजै। शूट सनाही ऊब पयाल, मोहे व्यापै माया जाल। अवर करतूत सगली जम डानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहज सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगै, साध जना की सेवा लागै। जे को आपुना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सद गावै। जे को अपनी शोभा लूरै, साध संग एहो मैं शूरै। जे को जन्म मरण ते डरै, साध जना की सरणी परै। जिस जान कौ प्रभ दर्स प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान। आप सकाउ जो जाने नीचा, सौ गनिये सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल किरीना, हर हर नाम तिन घट घट जीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेख सगल श्रिष्ट साजना। सुख दुख जन साम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा। निरतन कौ धन तेरो नाओ, नथावे कौ नाऊ तेरा थाओ। निमाने कौ प्रभ तेरो मान, सगल कटा कौ देवो दान। करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। अपनी गत मित जानो आपे, आपन संग आप प्रभ राते। तुमरी उस्तत तुम ते होए, नानक अवर न जानस कोए। सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जाप निर्मल कर्म। सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया। सगल उद्दम मैं उद्दम भला, हर का नाम जप हो जी सदा। सगल बानी में अमृत बानी, हर को जस सुन रसन बखानी। सगल थान ते ओह उत्तम थान, नानक जिह घट वसै हर नाम सलोक। निर्गुण यार एयान्या, सो प्रभ सदा संभाल। जिन किया ते सचीत रख, नानक निबही नाल। अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। जिन तू साज सवार सिगारिया, गर्भ अग्न में जिने उबारिया। बार्ब विस्था तुझे प्यारै दूध, पर जो बन भोजन सुख सूद। बिरद भया ऊपर साख सैन, मुख प्याउ बैठ कौ दैन। एहु निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्श लिहो तौ नानक सीजै। जे प्रसाद धर ऊपर सुख बसै, सोत भरात मीत बंता संग हसै। जे प्रसाद पीवै शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमुला। जे प्रसाद भोगै सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा। दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना, तिस त्याग अवर संग रचना। ऐसे दोख मूड अंध ब्यापे, नानक काढ लिहो प्रभ आपे। आद अंत जो राखन हार, तिस्यों प्रीत न करे गुवार। जाति सेवा नाव निध पावै, तास्यों मूडा मन नहीं लावै। जो ठाकुर साध सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे। जा की टहल पावै दरगह मान, तिस बिसारे मुगद अजान। सदा सदा ए भूलन हार, नानक राखन हार अपार। रतन त्याग कौडी संग रचै, साच छोड़ झूठ संग मचै।
जो षडना सो अस्थिर कर्मा न जो होवन सो दूर परा न छोड़ जाए तिसका श्रम कर संग सहाय तिस पर हर चंदन लेप उतारे धोरे गर तब प्रीत भस्म संग होए अंध कूप में पतत बिकराल नानक काड लिहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया शपश नाहे कश करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान इस नान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन सुआ गल पात्र कैसे तरह अथा जाक अंतर बसै प्रभ आप नानक ते जान सहज सुमात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गै लेहो ओढ़ निबहावै कहा बुझारत बुझै डोरा निस कही है तो समझे पूरा कहा बिसन पद गावै गूंग जतन करे तौ पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हाँ उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सो आवे न चीत जो बैराई तास्यों प्रीत बलुआ की ग्रह पीतर बसै आनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल न आवे मूडे चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बिकार महा लोभ त्रोह याहु जुगत बेहाने कई जन्म नानक राख लेहो आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र तहारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक दिन हार प्रभ छोड़ कै लाग आन सुवाए नानक कहू न सी जाई बिन नावै पत जाए अष्टपति दस वस्तु ले पाछ पावै एक वस्तु कारण बिखोट गवावै एक पीना दे दस पी हैर ले तौ मूड़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर स्यो नाही चारा ताको की जय सद नमस्कारा जाक मान लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहु मन बूठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगनत साहो अपनी देरास खात पीत बरत आनंद उलास अपनी अमान काश बहुर साहुले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस्त तिसे आगे राखे प्रभ की आज्ञा मन माथे उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनेक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेक बिरख की छाया स्यो रंग लावे ओह बिनसै ओ मन पछोतावै जो दिसै सो चलन हार लपट रहे ओ तह अंध अंधार बटाऊ स्यो जो लावै नेह ताको हाथ न आवै केह मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई मिथ्या तन तन कुटंब सबाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राज जोबन तन माल मिथ्या काम क्रोध बिकराल मिथ्या रथ हस्ती असव बस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की सरण नानक जाप जाप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्ब को हिरै मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तान नहीं पर उपकारा मिथ्या बासलित बिकारा बिन बूझे मिथ्या सब पय सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आरजा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तान अंध मुख आवत ताके दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाय मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यो किरपन के नरारथ दाम धन धन ते जन जिह कट बस्यो हर नाउ नानक ताके बल बल जाओ रहत अवर काश अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखों गांड लावत जानन हार प्रभु प्रबीन बाहर भेख न काहू पीन अवर उपदेश आप न करे आवत जावत जन्म मरे जिसका अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उन जान चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे मन
आप ही आप करत नबेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा उपाव सियान पसगल ते रहत सब कछ जान आत्म की रहत जिस भावै तिस लय लड़ लाए थान तनंत्र रहया समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहंमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जिह प्रसाद शक्ति ही अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जिह प्रसाद सुगंधत तन लावै तिस को सिमरत परम गत पावै जिह प्रसाद बसै सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरव तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग जिह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्याग कथ अवर लुभावै जिह प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय जिह प्रसाद तुझ सब को मन मुख ताकु जस रसन बखान जिह प्रसाद तेरु रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावै नानक पत सेती घर जावै जिह प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जिह प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै जिह प्रसाद तुझ को न पहुचै मन साथ साथ सिमरहो प्रभ ऊचे जिह प्रसाद पाई दुर्लभ देहि नानक ताकी भगत करे जिह प्रसाद आपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जिह प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ कौ कबहू ना बिसारी जिह प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत साध तिसै त्याई तिसै त्याए जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रख है जिह प्रसाद करह पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जिह प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को साथ साथ चेतारी जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर हो सदा अनूप जिह प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जिह प्रसाद तेरी पात्र है गुर प्रसाद नानक जासु का है जिह प्रसाद सुने करण नाद जिह प्रसाद पेख है बिस्माद जिह प्रसाद बोल है अमृत रसना जिह प्रसाद सुख सहजे बसना जिह प्रसाद हस्त कर चल है जिह प्रसाद संपूर्ण फल है जिह प्रसाद परम गत पाव है जिह प्रसाद सुख सहज समाव है ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागहो गुरु प्रसाद नानक मन जागहो जिह प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनहो बिसार जिह प्रसाद तेरा प्रताप रे मान मूड तू ताको जाप जिह प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिस हे जान मन सदा हजूरे जिह प्रसाद तू पावह साच रे मान मेरे तू तास्यो राच जिह प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गाओ आए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्व निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु न किन्हु लया जित जित लावहो तित लग है हर नाथ नानक इनकै कछु न हाथ सलोक अगम अगाद पार ब्रह्म सोए जो जो कहै सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटे अभिमान साध कै संग प्रगटे सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नीरा साध संग सब होत नबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी साध कै संग अगोचर मिले साध कै संग सदा पर फुलै साध कै संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहु तावै साध संग आस थेत मन पावै साध कै संग माया ते पिन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यों नहीं बैर साध कै संग न बीगा पैर साध कै संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा
साध के संग नाही हो ताप, साध के संग तजे सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध कै संग न कबहू तावे, साध कै संग सदा सुख पावे, साध संग बस्त अगोचर लहे, साधु कै संग आजार स्वाहै, साध कै संग बसै थान उच्चै, साधु कै संग महल पहुचै, साध कै संग दृढ़ै सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म, साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब ने सुतारै, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग सोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्ब थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम, साध कै संग नहीं कछु काल, दर्शन भेटत होत निहाल, साध कै संग कलुकत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहां उहां सोहेला, साध संग बिशुरत हर मेला, जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग न बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाउ, साध संग हर के गुण गाउ, साध कै संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घाट घाट डीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा भेद न जाने, जेता सुन है तेता बख्यान है, साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभु बने आई, साध कै साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई सलोक, मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एकस बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्प कौ सोख, ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौ लागै तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, ज्यों वसुधा को खोदै कोउ चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यो पावक का सह सुभाओ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागै जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे, नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा ना पाया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै एकै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम प्रवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा साध जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी कौ बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी कौ खोजे महेसुर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे,
ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्मज्ञानी का कथिया ना जाय अध्याखियर, ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गात, ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्मज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी साध जीव है नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी, नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का तनी सलोक, उरतार है जो अंतर नाम, सर्व में पिख है भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओह अपारस सगल निस्तार है, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परसो, मन मह प्रीत निरंजन दरसो, परत्रय रूप न पिख है नेत्र, सादगी टहल संत संग हेत, करण ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुरप्रसाद बिख्या पर हरै, मन की बाशना मन ते टरै, इंद्री जित पंच दुख ते रहत, नानक कोट मधे को ऐसा अपरसो, बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए पिन, कर्म करत होवै नेह कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बच है, केवल भगत कीर्तन संग रच, मान तान अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावै, नानक ओ बैष्णो परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल होवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पै बिसन परीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबोधै, राम नाम आत्म मैं सोधै, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो न आवै, वेद पुराण सिमरत बूजै मूल, सूखम मैं जानै असथूल, चहुवर ना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहुवर ना मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिस की गत होए, साध संग पावै जन कोए, कर कृपा अंतर उर तारै, पाश प्रेत मुगद पाथर को तारै, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कित न पाइय धर्म, नानक तिस मेलै जिस लिखिया तुर करम, जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास, तिस का नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगै परवान, अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सो जी परै, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं वियोग, तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेखो खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताई साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिया जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर राखे तैसा तिन नाओ, आपे करण करावण जोग, प्रभ पावै सोई फुन होग, पसरियो आप होए आनत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मात दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अभिनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पय निहाल, श्लोक उस्तत करहे अनेक जन, अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बान प्रमहे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट दपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवतन नाम त्याव है, नानक करते का अंत न पाव है,
ਕਈ ਕੋਟ ਪਹਿ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਂਧ ਅਗਿਆਨੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਅਭਿਗ ਆਤਮ ਨੇ ਕੋਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰ ਹੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸ਼ਰਮ ਮਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਹੇ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵ ਹੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ। ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਾਸ ਭੋਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪ ਜਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ ਭੂ ਮੰਡਲ, ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖੇਤਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛਤਰ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ, ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਅਰਸਾਸ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਕਿਨਰ ਪਿਸਾਚ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ। ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੇ ਸਭ ਹੂ ਤੇ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀਵ ਹੈ ਮਰ ਹੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁਜੋਨੇ ਫਿਰ ਹੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਘੱਲ ਹੀ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਤਨਵੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ, ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹਾਥੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿੰਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਖੋਜੰਤੇ, ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ, ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਭਿਨਾਸ਼, ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੈ ਸਤ ਸੰਗ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ, ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਤਨ ਤਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ, ਕਈ ਜੁਗਤ ਤੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ, ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਸਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਕ ਏਕੰਕਾਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਤ, ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ, ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਰ ਰਹਿ ਏਕੋ ਨੇਤਰੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵ ਹੈ ਅਮਰ ਭੈ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵ ਹੈ ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸੁਮਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰਣ ਹੈ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸੋਏ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪੋ ਥਾਪਣ ਹਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ, ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਾਰ ਰਹਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ, ਹੁਕਮੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਨੁੱਖ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸਤੇ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਤ ਉਧਾਰੈ, ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨ ਆਵੈ, ਕਹੋ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ, ਇਸ ਕਹਿ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਪਿਛਲੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਅਨਜਾਨਤ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ, ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਣ ਆਪ ਬਚਾਏ, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹਿ ਦੇਸ ਧਾਵੈ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰ ਆਵੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ, ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ, ਜਾ ਕਉ ਆਪਣੇ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ, ਤਾਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਣੈ ਜਗਦੀਸ਼, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ, ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ, ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਨਾਈ, ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਬਡਾਈ, ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਇਸ ਹਾਥ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਓ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੋਨ ਥੀਓ, ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ, ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਗ ਹੱਸੈ, ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਬਹੂ ਊਬ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ, ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਕਬਹੂ ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਕਬਹੂ ਸੋਇ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਬਹੂ ਮਹਾਂਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ, ਕਬਹੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋਤਰ ਵਾਲ, ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬਡ ਰਾਜਾ, ਕਬਹੂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ,
कबहू आप कीरत में आवै कबहू भला भला कहावै ज्यों प्रभ राखै तिवही रहै गुरप्रसाद नानक सच कहै कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मोन धारी लावै ध्यान कबहू तट तीरथ इसनान कबहू सिद साधिक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनेक जोन पर मैं परमिया नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावै ज्यो प्रभ भावै तिवै नचावै ज्यो तिस भावै सोई होए नानक दूजा अवर न कोए कबहू साध संगत एहो पावै उस अस्थान ते बहुर न आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस अस्थान का नहीं विनाश मान तान नाम रते एक रंग सदा बसा है पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सतगुरु बान सलोक सुखी बसाए मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुवान जो जाने मैं जोवनवंत सो होवत बिष्टाका जंत आपस को कर्मवंत कहावै जन्म मरै बहु जोन परमावै धन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै नानक इहा मुकत आगै सुख पावै तनवंता होए कर गरबावै तृण समान कश संग न जावै बहु लस्कर मान को ऊपर करे आस पल पीतरता का होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत किसे न बदै आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुरप्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करै हों तारे श्रम पावै सगले बिर थारे अनेक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर दरगह कहो कैसे गवै आपस कहो जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्व कीरेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जानै मुझ ते काश होए तब इस को सुख नाही कोई जब ए जानै मैं किश करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारै को बैरी मीत तब लग नहीं चलना ही चीत जब लग मुह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुरु प्रसाद नानक हो छूटै सहस कटे लख को उठतावै तृपत न आवै माया पाछै पावै अनेक भोग बिख्या की करै नह त्रिपतावै खाप खाप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसै प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो केश कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हूं कै संग बूझै देखै कर बबेक आपे एक आपे अनेक मरै न बिन सै आवे न जाए नानक साध ही रहया समाए आप उपदेसै समझै आप आपे रचिया सब कै साथ आप कीनो आपन बिस्थार सब कछ उसका उकरने हार उस ते भिन कहो किश होए थान थनंतर एक सोए अपने चले तो आप करने हार कौतुक करे रंग अपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वखियानी सच सच सच सब कीना कोट मधे किने बिरलै चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत सरन जो जन परै सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बहुरु बहुरु अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए
संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन सोभा ते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत कै दुखन थान प्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक पी तरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग जिउ लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगद जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै, संत कै दुखन सब को शलै, संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच नीच आए, संत दुखी का थाउ को नाहे, नानक संत पावै थाउ ओइ पी गत पाहे, संत का निंदक महातताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई, संत का निंदक महात्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया अर दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख मह दुख, नानक संत पावै ता उष का पी हुए मोख, संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागै, संत के दुखी को सब त्यागै, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी, संत का दुखी जन्मै मरै, संत की दुख ना सुख ते तरै, संत के दुखी कौ नाही ठाओ, नानक संत पावै ता लय मिलाए, संत का दुखी अद बीच ते टूटै, संत का दुखी कितै काज ना पहुंचै, संत के दुखी को उद्यान प्रमाइय, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किश नाहे, आपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवरण रखन हार, नानक संत पावै तां लए उबार, संत का दुखी इउं बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ईधन नहीं त्रपै, संत का दुखी छुटै अकेला, जो बुआड़ तिल खेत माहे दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी साध मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पाया, नानक ज्योतिष पावै सोई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मराए ना जीवाइए, संत के दुखी की पूजै ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत कै दुख न त्रष्टै कोय, जैसा पावै तैसा कोई होए, पया किरत न मेटै कोय, नानक जानै सचा सोए, सब घाट तिसके ओकर निहार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करहो दिन रात, तिस त्यावहो सास गिरास, सब काश वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करै तिस आपन नाम दे, बड़ भागी नानक जन से सलोक, तज हो सियानप सुरजनाओ, सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखाओ, नानक दुख परम पहु जाए, अष्टपति मानुख की टेक वृथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे आधाए, बहुर न तृष्णा लग आए, मारे राखे को आप, मानुख कह किशना ही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन लाग कोए, उस्त मन मैं कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लेहे जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग, चरण चलाओ मार्ग गोबिंद, मिटहे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक ऊजल मथा, बड़ भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करह विचार, से तनवंत गने संसार, मान तान मोख बोलै हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पशान, एत ओत कियो सो जी जान, नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तिन्हें निरंजन जानया, गुर प्रसाद अपन आप सुझै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते उ हर जन रहत, आन दिन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त मैं सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिए जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तेसा है न लागै दुख,
जिस कौ हर प्रभ मन चित आवै सो संत सुहेला नहीं डोलावै जिस प्रभ अपना कृपा करै सो सेवक कहो किस ते डरै जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरप्रसाद तत सब बूजिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सूखम सोई अस थूल नह किश जन्मै नह किश मरै आपन चले तो आप ही करै आवन जावन दृष्ट आन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मह आप अनेक जुगत रच थाप उथाप अभिनाशी नाही किश खंड धारण धार रहे ब्रह्मांड अलख अपेव पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सो बावंत सगल संसार उधरै तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख बिसारण आपे मेल लय कृपाल गुरु का शब्द जप पय निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिसनु कृपा करै बड़ पागै नाम जपत पावै विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान जो किश करै सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सहज सुभाए होवै सो होए करणे हार पछाणे सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजे तिस माहे समाए ओए सुख निधान उन्हु बन आए आपस को आप दीनो मान नानक प्रभ जान एको जान सलोक सर्व कला भार पूर प्रभ बिरथा जानन हार जाकै सिमरन उदरी है नानक तिस बलहार अष्टपति टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अभिनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कशु ना होए जे सौ प्राणी लोचै कोए तिस बिन नाही तेरा किश काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोहै प्रभ की जोत सगल घट सोहाय तनवंता होए क्या को गर्भ है जा सब किश तिसका दिया दर्भ है अत सूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहता है जे को होए बहे दातार तिस दिन हर जाने गवार जिस गुर प्रसाद टूटै हौ रोग नानक सो जान सदा आरोग ज्यो मंत्र को थामे थमन त्यों गुर का शब्द मन अस थमन ज्यो पाखाण नाव चाड़ तरै प्राणी गुरु चरण लगत निस तरै ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुरु दर्शन देख मन होए विगास ज्यो महा उद्यान मह मार्ग पावै त्यों साधु संग मेल ज्योत प्रगटावै तिन संतन की भाषा तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बिल लाइये पुरब लिखे का लिखिया पाइये दुख सुख प्रभ देवनहार अवर त्याग तू तिसा है चेतार जो काश करै सोई सुख मान भूला काहे फिरया जान कौन बस आई तेरा संग लपट रहे रस लोभी पतंग राम नाम जप हिरदय माहे नानक पात सेती घर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताज अभिमान लिहो मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाद के पसंत है संगचाल अवर त्याग बिखिया जंजाल तन तन कहे सब कोए मुख उजल हर दरग सोए इहो वापार विरला वापार है नानक ताकै सद बलहार है चरण साध के तोए तोए पियो अर प्रसाद कहो अपना जियो साध की तूर करहो इसनान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वड भागी पाई है संत साध संग हर कीर्तन गाई है अनेक बिघन ते साधु रख है हर गुण गाय अमृत रस चख है ओट गही संत दर आया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक कौ जीवालनहार भूखे को देवत आधार।

एक होए साच करणी सचता की रहत सच हृदय सत मुख कहत साची दृष्ट सचा आकार सच वरत साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक रूप न रेख न रंग केशो त्रेहो गुण ते प्रभ भिन्न तिसै बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न अष्टपदी अभिनाशी प्रभ मन मह राख मानुक की तू प्रीत त्याग तिस ते परै नाही केश कोय सर्ब निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बख्शंद साध तेरे की चरणी पाऊ नानक कह मान एहो अनराऊ मनसा पूर्ण सरणा जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल सद जाकै सर्ब थोक सुनियह घर ताकै राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर गृहस्थ मैं भोगी त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जा की लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्या वाह से तेहो गुण मैं जाको परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच तिसके असथान जैसा जन आवे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेख करे एक रंग नाना बेद कीनो विस्थार प्रभ अविनाशी एक ओंकार नाना चलित करे खिन माहे पूर रहे ओ पूर्ण सब ठाए नाना बेद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवै नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरियां सब पवन नाम कै संग उदरे सुन श्रवन कर कृपा जिसे आपने नाम लाए नानक चौथे पद मै सो जन गत पाए रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसहै सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत तेजन जाक हृदय प्रवेश सत निरत बूझै जे कोई नाम जपत ताकि गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मेत गत जिस की श्रेष्ठ सो करने हार अवर न बूझ करते विचार करते की मेत ना जाने किया नानक ज्योत सुभावै सो वरतिया बिसमन बिसम पय बिसमाद जिन बूझिया तिस आया स्वाद प्रभ के रंग राज जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जाकै संग तरै संसार जन का सेवक सो वड भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत ध्यावनहार आप सत सत सबतारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ बक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुजनहार कौ सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावण तिन मूल पछानिया जा कै हृदय विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान ते समान प्रगटाया
ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ, ਬਸਤ ਮਾਹੇ ਲੈ ਬਸਤ ਗਡਾਈ, ਤਾਕੋ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕਹਿ।

न जाई बुझे बुझन हर बबेक नारायण मिले नानक एक। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रभ पालनहारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ तारे नानक सो सेवक सास सास समारे आपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पात रखे ताकि गत मित कोई न लख है प्रभ के सेवक कहो को न पहुंचे प्रभ के सेवक ऊंच ते ऊंचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दै दिस प्रगटाया नेकी कीरी मैं कल रखे भस्म कर लस्कर कोट लख है जिसका सास न काढ़त आप ताकौ राखत देकर हाथ मानस जतन करत बहु भांत तिसके करत बिरथे जात मारै न राखै अवर न कोय सर्व जिया का राखा सोए काहे सोज करहे रे प्राणी जप नानक प्रभ आलख वेडाणी बारंबार बार प्रभ जपिय पी अमृत ए मान तन त्रपिय नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किश अवर नाही दृष्ट आया नाम तहन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जान त्रिपताने मन तन नामे नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जान कै सद काम बोलो जस जिहबा दिन रात प्रभ अपने जन की नींदात करह भगत आत्म कह चाय प्रभ अपने सिउ रहे समाए जो हुआ होवत सो जानै प्रभ अपने का हुक्म पछानै तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ पहर प्रभ बसै हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे तिनकी ओटले मन ताने अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पाव है तिसके दर्श सब पाप मिटाव है अवर सयान पसगली शाड तिस जन की तू सेवा लाग आवण जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा श्लोक सात पुरख जिन जानिया सात गुरु तिसका नाओ तिसकै संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सात गुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुरु सदा दयाल सिख की गुरु दुरमत मल हिरै गुरु बचनी हर नाम उच्चरै सात गुरु सिख के बंधन काटै गुरु का सिख बेकार ते हटै सात गुर सिख कहो नाम धन दे गुर का सिख बड़भागी हे सात गुर सिख का हलत पलत सवारै नानक सात गुर सिख कहो जी नाल सुमारै गुर के ग्रह सेवक जो रहै गुर की आग्या मन में सहै आपस को कर कछ न जनावै हर हर नाम हृदय सद त्यावै मन बेचाए सतगुरु के पास ते सेवक के कार्य रास सेवा करत हुए नहीं कामे तिस कौ होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुरु की मत ले बीस बिस्वे गुरु का मन मान है सो सेवक परमेश्वर की गत जान है सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुरु को बल जाओ सर्व निधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म एक कहे आप नहीं काश परम सहस्याण पलै न जाइए नानक ऐसा गुरबड़ पागी पाइए सफल दर्शन पेकत पुनीत परसत चरण गात निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगाह गवे सुन कर बचन करन आगाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुर अख्याओ जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखै हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावै तिस लय मिलाए जिहबा एक उस्तत अनेक सात पुरख पूर्ण बबेक काहू बोल ना पहुचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकी कीमत किने ना पाई
अनेक भगत बंधन नित करै चरण कमल हिरदा सिमरै सत बलहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रास पावै जन कोय अमृत पीवै अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक काउ दे मोह माया के संग न लेप मन मह राख हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक भरम मोह दुख तहते नासे तपत माहे ठांड वरताई आनंद पाया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे भौ चूका निरभौ होए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे जिस का सा तिन कृपा तहरी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला धार जिने मोह सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्ब निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग भय प्रकाश साध कह संग राच रचना अपनी कल तहारी अनेक बार नानक बलहारी सलोक साथ न चाले बिन भजन बिख्या सगली शार हर हर नाम कमावना नानक एहो तहन सार अष्टपदी संत जना मेल करहु विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सब मीत बिसारो चरण कमल रिदमै उतहार हो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वथ एहो धन संचो होवो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे ना सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस धन को चार कोंट उठत हवै सो धन हर सेवा ते पावै जिस सुख को नित बाछ मीत सो सुख साधु संग परीत जिस सुबा को करह भली करनी सा सुबा भज हर की सरनी अनेक उपावे रोग न जाए रोग मिटै हर अवख दलाए सर्ब निधान मह हर नाम निधान जप नानक दरगह परवान मन प्रबोध हो हर कह नाई दह दिस ताव त्याव ठाए ताको बिघन न लागै कोय जाकै हृदय बसै हर सोए कल ताती ठंडा हर नाउ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भौ बिनसै पूरन होए आस भगत पाए आत्म प्रकाश तीर्थ घर जाए बसै अबिनासी कह नानक काटी जम फासी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा आवागवन मिटै प्रभ सेव आप त्याग सरण गुरुदेव इउं रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनेक उपाव न छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद बिचारे हर की भगत करहु मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग न चाल सते रह तहना तू क्याल पटावा है मूर्ख मना सोत मीत कुटुंब अर बनता इन ते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया बिस्थार इन ते कहो कवन छुटकार अस हस्ती रथ असवारी झूठा डंप झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझै ना बेगाना नाम बिसार नानक पशुताना गुर की मत तू लेह आने भगत बिना बहु डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जप हो अवरा नाम जपा वाह सुनत कहत रहत गत पा वाह सार पूत सत हर को नाओ सह सुबाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतरस मैल बिन सजाए हो मैं बिख फैल होहे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम संभाल छाड़ सियान पसगली मना साध संग पावह सच तना हर पूंजे संच करहो बेहार इहां सुख दरगह जयकार
ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਕੇ ਮਸਤਕ ਲੇਖ, ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਲਾਹੇ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹੇ, ਏਕ ਸਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਨੰਤ, ਮਨ ਤਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ, ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰ ਆਪ, ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਵਿਆਪ, ਅਨਿਕ ਬਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਪਹੇ, ਏਕ ਆਰਾਧ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਗਏ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਭਰਾਤਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਕ ਜਾਤਾ ਸਲੋਕ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਣਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਹੁ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮੰਗੋ ਧੂਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਿਰ ਸਰਦਾ ਪੂਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੇ ਧਿਆ ਵਾਹੋ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤ, ਭਗਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤਨੀਤ, ਏਕ ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੀ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾ ਨੇ, ਸੋ ਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ, ਉਪਜੈ ਚਾਉ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ, ਪਰੇ ਸਰਣ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗ, ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸੋ ਆਨ ਦੇਨ ਲਿਵਲਾਗ, ਬਡ ਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਪਈ, ਸਾਤ ਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ, ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇਓ ਦਇਆਲ, ਸੇਵਕ ਕੀਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਜਨ ਭਇਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭ੍ਰਮ ਗਇਆ, ਕੈਸ਼ ਪੁਨੀ ਸਰਧਾ ਸਭ ਪੂਰੀ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਜੂਰੀ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਤਨ ਲਿਆ ਮਿਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ, ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕਾਲ ਨਾ ਭਾਨੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀਆ ਜਾਣੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ, ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਾਖੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਬਿਖ ਤੇ ਕਾਢੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਂਢੈ, ਗੁਰਪੁਰੈ ਤਤ ਇਹ ਬੁਝਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤਿਹਾਇਆ, ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਏ ਕਾਮ, ਆਨ ਤਿਆਗ ਜਪਹੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵਹੋ, ਆਪ ਜਪਹੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵਹੋ, ਭਗਤ ਪਹਾਏ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰ, ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋ ਸਿਸ਼ਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਖ ਨਿਦ ਨਾਮ, ਬੁੱਢਤ ਜਾਤ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ, ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪ ਹੋ ਗੁਣਤਾਸ, ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਉ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਇਹੀ ਸੁਹਾਉ, ਨੇਤਰ ਹੋ ਪੇਖ ਦਰਸ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮਨ ਬਿਗਸੈ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧੋਏ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ, ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਵੈ ਸੰਗ, ਏਕ ਬਸਤ ਦੀ ਜੈ ਕਰਮਾਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਸਮਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਬਖਸੰਦ ਦੀਨ ਦਇਆਲ, ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ, ਜੋ ਜੋ ਜਾਪੈ ਸੋ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ, ਭਗਤ ਭਾਏ ਲਾਵੈ ਮਨ ਹੀਤ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਨਿਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ, ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ, ਏਕ ਨਿਮਖ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਭਾਈ, ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗੀਤ, ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ, ਭਲੀ ਸੋ ਕਰਮੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ, ਹਿਰਦੈ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੁ ਨਿਵਾਸ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਲੋਕ ਸਾਰ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਬ ਆਕਾਰ ਇਹੋ ਕਾਸ਼ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਬ ਕਹਿਤੇ ਹੋਤਾ, ਜਬ ਤਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁਨ ਸਮਾਧ, ਤਬ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਸੰਗ ਕਮਾਤ, ਜਬ ਇਸ ਕਾ ਬਰਨ ਚਿਹਨ ਨਾ ਜਾਪਤ, ਤਬ ਹਰਕ ਸੂਖ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਤ, ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਬ ਮੋਹ ਕਹਾ ਕਿਸ ਹੋਵਤ ਭਰਮ, ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਵਰਤੀਜਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਦੂਜਾ, ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ, ਤਬ ਬੰਦ ਮੁਕਤ ਕਹੋ ਕਿਸ ਕਹੋ ਗਨੀ, ਜਬ ਏਕ ਹਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ, ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੋ ਕੌਣ ਅਵਤਾਰ,
जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए ताव सेव साकत कहो के तठाए। जब आपे आप अपनी ज्योत धर रहे तब कवन निडर कवन कत डरे। आपन चले तो आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अबिनासी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहा बिनासन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो हो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा। जह निर्मल पुरख पुरख पात होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौ मान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शिदर लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किस है भूख कवन तृप्तावै। करन करावन करने हार नानक करते का नाही सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सोत पाई। जह सर्ब कला आपे प्रवीन तह बेद कतेब कहा को चीन। जब अपन आप उरतारे तौ सगन आप सगन कहा बिचारे। जह आपन ऊच आपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कही चेरा। बिस मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप। जह अशल अशेद अभेद समाया ऊहा किसे व्यापत माया। आपस को आप ही आदेश तेहो गुण का नाही प्रवेश। जह एक है एक भगवंता तह कौन आचिंत किस लागै चिंता। जह आपन आप पतियारा तह कौन कथै कौन सुनने हारा। बहु बे अंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आपे पहुचा। जह आप रचियो प्रपंच आकार तेहो गुण में कीनो बिसथार। पाप पुन तय पई कहावत को नरक को सुर्ग बंशावत। आल जाल माया जंजाल हमें मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपख्यान। आपन खेल आप कर देखा है खेल संकोचा है तौ नानक एका है। जह अब गत भगत तह आप जह पसरै पासार संत प्रताप। दोहू पाक का आपे तनी उनकी शोभा उन्हों बनी। आपे कौतुक करे आनंद चोज आपे रस भोग निर्जोग। जिस पावै तिस आपन न इलावै जिस पावै तिस खेल खिलावै। बेशुमार अथा अगंत अतुलै ज्यों बुलावा हो त्यों नानक दास बोलै। श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार। अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार आपे एक आप बिसतार। जात सुभावे तां श्रेष्ठ उपाय आपने बाणे लय सुमाए। तुम ते भिन्न नहीं किश होए आपन सूत सब जगत परोए। जा कौ प्रभ जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता। जी जंत्र सब तक है हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राख है तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मन हो बेसार है। तेस ताज अवर कहां को जाए सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जन हो साथ। गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार। पूर्ण पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल। अपने करतब जाने आप अंतर जमी रहे हो व्याप। प्रतपाल जीअन बहु भांत जो जो रचियो सुत सहत्यात। जिस भावै तिस लय मिलाए भागत करह हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक एक जान्या। जान लागा हर एक नाए तिसकी आस न बिरती जाए। सेवक को सेवा बन आई हुक्म बूझ परम पद पाई। इस ते ऊपर नहीं विचार जाकै मन बसया निरंकार। बंधन तोर पए निर्वैर अन दिन पूज्य है गुर के पैर। ए लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले। साध संग मिल करहु आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद।
राम नाम तत करहो विचार, दुर्लभ देह का करो उदार, अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुहाओ। आठ पहर प्रभु पेखु नेरा, मिटै अज्ञान बिनसै अंधेरा, सुन उपदेश हृदय बसावहो, मन इच्छे नानक फल पावहो। हलत पलत दोए लिहो सवार, राम नाम अंतर उरतहार, पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसै तिस साच प्रीख्या, मन तन नाम जप हो लि बिलाए, दुख दर्द मन ते पहो जाए, सच वापार करहो वापारी, दरगह निभै खेप तुम्हारी, एका टेक रखो मन माहे, नानक बहुर न आवह जाहे, तिस ते दूर कहा को जाए, उबरै रखन हार ते आए, निरपहो जपै सगल भव मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै, जिस प्रभ रखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन कहो कोई न पहुचन हार, सिर ऊपर ठाडा गुर सूरा, नानक ताके कारज पूरा, मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उद्रत श्रेष्ठ, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, धन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसै सोहत निहाल, ताके निकट न आवत काल, अमर पै अमरा पद पाया, साध संग नानक हर तिहाया। सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर बिनास, हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रगास। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, सगल समग्री एक सकट माहे, अनक रंग नाना दृष्टा है। नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम, सुन समाद अनहत तहनाद, कहन न जाई अचरज बिसमाद, तिन देख्या जिसे आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए, सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट ब्याप रहया भगवंत, तरन माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल, बान तीन पर्वत है पार, ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पणी बैसंतर माहे, चार कुंट दह दिसे समाहे, तिस ते भिन्न नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ, वेद पुराण सिमरत मैं देख, ससियर सूर नक्षत्र मैं एक, बाणी प्रभ की सब को बोलै, आप अडोल न कब हूं डोलै, सर्ब कला कर खेलै खेल, मोल ना पाई है गुण है अमोल, सर्ब ज्योत मह जाति ज्योत, तार रहो स्वामी ओत पोत, गुरप्रसाद परम का नास, नानक तिन मैं एहो विसास, संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म, संत जना सुनहे शुभ बचन, सर्ब व्यापी राम संग रचन, जिन जाता तिस किए रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख माने, करन करावन हार प्रभ जाने, अंतर बसे बाहर पी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही, आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पात, तिस भावे ता करे विस्थार, तिस भावे ता एक ओंकार, अनेक कला लखी न जाए, जिस भावे तिस लय मिलाए, कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप आप भरपूर, अंतर्गत जिसे आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए, सर्व भूत आप वरतारा, सर्व नैन आप पेखनहारा, सगल समग्री जाका तना, आपन जासो आप ही सुना, आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया, सब कै मध अलिप तोर है, जो किश कहना सो आपे कहै, आग्या आवै आग्या जाए, नानक जा पावै ता लै समाए, इस ते होए सो नाही बुरा, ओरै कहो किने कश करा, आप भला करतूत आतनी की, आपे जाने अपने जी की, आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संगराच, ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होए तसो जी पाए, तिस का किया सब प्रवान, गुर प्रसाद नानक एहो जान, जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए, ओह धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुकत, जिस हृदय भगवंत, धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया,
जन आवन काई है सो आओ, जन कै संग चित आवै नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। सलोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। सास सास सिमरहु गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद। आस अनित त्याग हो तरंग, संत जना की दूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करहो, साध संग अग्न सागर तरहो। हर धन के भर लिहो भंडार, नानक गुरपूरे नमस्कार। सुखेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। नरक निवार उधारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो। चित चित वाहो नारायण एको, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम सलोक साध के बचन, अमुलीक लाल एह रतन। सुनत कमावत होत उदार, आप तरह लोक कह निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मान लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै। प्रगटे गोपाल महा तकै माथै, नानक उदरे तिनकै साथे। सरन जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए। मिट गए बैर भय सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन। सुप्रसन्न पए गुरुदेव, पूरन होई सेवक की सेव। आल जंजाल बिकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निभी खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करहो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सुख मनि सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसै सुहोत निदान। सर्व इच्छा ताकी पूरन होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते ऊच पाए अस्थान, बहुर न होवै आवन जान। हर तन खाट चलै जन सोए, नानक जसा है प्राप्त होए। खेम शांत रिद नाव निद, बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध। विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान। चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मध सगल ते उदास। सुंदर चतुर तत का बेता, सम दर्शी एक दृष्टेता। इह फल तिस जन कै मुख भने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। एहो निधान जपै मन कोए, सब जुग में ताती गत होए। गुण गोबिंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत काय मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जमते छुटै। जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। जिस मन बसाए सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत। जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुर्लभ दे।

सुखमनि सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

प्रणाते नमस्तुंग परमाते नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृसंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तंग प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धंग निवासी चर्पण चंत्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अकल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल छंद त्व प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जौन पुर कपार सर्वान त्रिमान देव पेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल यत्र तत्र विराज अवतूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेक आद पुरख उदार मूर्त जौन आद अशेक देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैल्यो अनुराग नाम काम हीन पेख ताम हूं नह जाहे सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान तथा एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानही जे बेद और कतेब रूप रंग न जात पासो जानी के जीव तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिर चतर चक मानी पुरतीन लोक चौदह के बिकै जग जा पीजे जाप वा देव नाद मूर्त ताप्यो सबै जे ताप परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो स्वयं भव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत अभूत लख अपेश धर्म धाम सो परम रहत अभूत लख अपेश अंग राग न रंग जाकै जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमेक अनुस्तिक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अभंग नात्मेक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेक सर्व शास्त्र न जानहि जे रूप रंग अरेक परम वेद प्राण जाकै नेत भाखत नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवही वो चित मत पार चंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमानंग अनुभव प्रकाश निश्चिन अनास आजान बाहु साहन साहु राजान राजपान अनुपान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनुपूत अंग आभा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन परनाम निरपह निकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वापर्णा ड्यंडन वाड्य चाचरी चंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्नामे अकामे पुजं प्रिया चंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दानी चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य चाचरी चंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाये न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृश्य अकृश्य भगवती चंद त्व प्रसाद कथते किया चिज देश है किया भिज पेश है किया गंज करम है किया पंच भरम है किया भिज लुक है किया दित सुख है के अवतूत वरण है के विभूत करण है के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के आशोक वरण है के सर्वा अपरण है के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के वर्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आद अधेव है के आप अपेव है
कि चित्रंग वही न के अधीन न के।

रजा कह रही मेरे हक है कि पाक बेअब है कि गैबुल गैब है कि अफुल गुनाह है कि साहन साह है कि अफुल गुनाह है कि साहन साह है कि कारण कुनिंद है कि रुजी देहंद है कि राजक रहीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पिश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काजय कि सर्वत्र राजय कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र ताप्य है कि सर्वत्र पान्य है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं कलिम है कि परमं फहीम है कि अकल अलम है कि साहिब कलम है कि हुस्न अल वजू है तो मामुल रजू है हमेशल सलाम है सलीकत मदाम है गरीबुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तुमा मै रजुअल निदान है हरीफुल अजीम मै रजा की यकीन है अनिकुल तरंग है या भेद है या पंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुयुक्त सुधा है सदैवं स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्वाध स्वरूप है अगाध है अनूप है अंगाध रूप है अनाध स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे शुभं सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिपुगत स्वरूप है अचिज है अछूत है कि नरकं प्रणास है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है बेपुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी चंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अभगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अपेख है अटा है अगाह है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित है अनित है सुनित है आजात है आजाद है चिरपड़ चंत्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग अंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग तर्मं सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता रसावल चंत्व प्रसाद नमो नरकनासी सदैवं प्रकाशी अनंगं स्वरूपे अपंगं बेपूते परमात्म प्रमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्वाध विपूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं सरी कह अमितु अमी कह सदैवं प्रभा अजय अजय भगवती चंत्व प्रसाद कि जाहर जहूर है कि हाजिर हजूर है हमेशल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनल चिराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी दिहंद है कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि हुसनल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंक वर्णास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकंग प्रणास है बहस्तुल निवास है कि सरबुल गवान है हमीशुल रवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है अदीशुल अलेख है हमीशुल अपेख है जमीनुल जुमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनांग है कि मितो अपांग है मत पार चंत्व प्रसाद मुनमन प्रणाम गुण गण मुदाम अरबर अगंज हर नर पर पांजु अनगन प्रणाम मुनमन सलाम
हर नर अखंड बर नर अमंड वन पवन आस मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनछित अंग आसन अपंग उपमा पार गत मितुदार जल थल अमंड दिशिज बेया जल थल अमंड दिशिज अपंड जल थल महंत दिशिज बेअंत अनुपवन आस त्रितर तुरास अजान बाहु एक सदाहु ओंकाराध कथनीय नाद खलखंड के आल गुरुबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नामन चिज गाता चिज न बातन चन गातन रंज बातन टुट पंडारन डट अपार आडीठ धर्मत टीठ कर मन भरन अनंताता महंत हर बोल मना चंतव प्रसाद करुणालय है हर कालय है कलकंडन है मैं मंडन है जगतीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विषम पर है सर्वेश्वर है जगतीश्वर है ब्रह्मंड से कलखंड से परते पर है करुणा कर है जपा जप है थपा थप है कृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है कृता कृत है तरणी त्रित है मृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है जपा कृत है अमृता मृत है निर्णायक है खलकायक है विश्वम पर है करुणालय है निर्पनायक है सर्वपायक है पावपंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रया छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासं तामसं शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलहकर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चांद अजय अलय अपह अभय अपू अजू अनास अकाशु अगंज अपंज अलख अपख काल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी नराग नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रया छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे सुमस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते सुमस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी करिमुल कुनिंदा सुमस्तुल निवासी अजाय बेपूते गजाय विगनी में हरियंग करियंग करिमुल रही में चतर चक्र वर्ती चतर चक्र पुगते सोयम पव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते

0: ढोलू चरखा चक्की चक थल वारोले बहत अनंत लाटू माधाणिया अनगा पंखी पौंदिया लै नसा सूए चाड़ पवाई अजंत नानक पौंदिया गणत नान
1: मंदर मंत वाय सोए पै कृतन चे सब कोय नक नक हसे चले से रोए उड़ न जाई सदना होए।

सत्संग जी बोलो जी। वाहेगुरु वाहेगुरु, एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहेब आज को दिपाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लही त्या है। फिर अंकित कुरते अमरदास रामदास से वैसे आए अर्जुन हर गोविंद सिमरन श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय ते सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरया कारण उन्हें दयाता है सब साई हुए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब साई हुए सहाय। दसा पातशाह के पुत्रात्मा स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पास दार दाते अंतर के घर से बोलो जी। वाहे गुरु गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटिया जपियां तपियां जिन्हें नाम छपया वन चख्या दे चलाई। तेग वाह देख निटकी दतना प्यार सत्यार की कमाई दते अंतर के बोलो जी। वाहे गुरु जन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म हे सी दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुआईया चरखड़िया चले आ रहे चराए गए गुरुद्वारे सेवा कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा से किसी के निभाए तिना नहीं कमाई दाते अंदर के बोलो जी। वाहे गुरु पख्तर गुरुद्वारे दाते अंदर के बोलो जी। वाहे गुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेता हुआ चित आवन का सदका सर्व सुख हुआ जहां जहां गुरु खालसा जी साहब रखा आए देख देख की फतेह बृद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बुरबले बोलो जी। वाहे गुरु सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नामदान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान चौकियां चंदे बुंगे चुग चुगा टल धर्म का जयकार बोलो जी। वाहे गुरु सिखां दा मन नीवा मत उची मत पद के राखे आप वाहे गुरु। गुरु की महाराज पंथ सदा सहाय दता दियो गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तों आपने पंथ नूं छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन की दात सेवा संभाल दान अपने खालसा जी ने बख्शो हे न्योटिया दी ओट गुरु न्यासरिया द्यासरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ उतार दोए कर जोड़ करो अरदास तुत भावे ताने रास हे की प्रभाज जी आपके चरण कामना दरदास मिनता जी आपने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाशमान हो संगत दर्शन दर दे के निहाल उतार दियो मेहरबानिया ने पाठ हो अनुरागी सिंह ने आपके चरण आसा जुआर के कीर्तन किए ने विद्वान वीर ने आज हुक्मनामे की कथा प्यार की कृपा करो हो यहां भुला चुका जी माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोत के सच खन प्रमाण करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदय की कृपालता करो जी। अगो तो शुद्ध पित्र बाणी प्यारी मन बुद्धि बख्शिश करो भी महाराज इस खुशी विच आप दी बख्शिया दाता विचों पितर कराप शाह देगा त्यार कर हादन दार आप दी भोग लाओ शीत प्रसाद सात संगत की रसना लायक हो जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पितर नाम जप हम बख्शिश करो दतार जी दुखां कलेशां रोगां दा नाश करो सुखां दा प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी। गुरु जी महाराज कृपा करो आप जी बख्शियां दातां जो लंगरां टुट सवारियां प्रवान करें तथा आप दे चरणां सेवा कर रहे सारे टैलिए संगा सिंगणियां नूं तंदुरुस्ती बख्शो चाढ़ी करो बख्शो अते सदा ही इस तरह अपने चरणां सेवा दी भावन मखन बालता करो। गुरु जी महाराज दतार जी अमृत वेले तो लैके दाते आई हैं साफ संगत जी दर प्रवान करो घड़ियां खिलाओ संगत दर्द तेरे पर भेटा बना शुभकामना पूर्ण करो जी। गुरु जी महाराज बेहद परिवार वालों बेहद माया बेहद रसदा आप दे लगा देगा वास्ते हाजरी ने प्रवान करो दिता मंदिर वास्ते हाजरी ने प्रवान करो सब जी कमाइया सब लोगों घर जो हाथ बखी करने की बालता करो जी। गुरु जी महाराज रोसा सचे पातशाह दरकर सेवादार भाई मोहता सिंह जी इंडिया तो राजखुशी वापस आने की खुशी में दिता अब चरना धनबाद कर दें शुक्रिया अदा कर दिया फिर तुम्हारा घर दार प्रवान करो मेहर करो मेरे प्रयास भाई मोहता सिंह सिर रखो तो हमेशा तंदुरुस्ती सुख शांति।

कार्यक्रम अगर निर्माता करो जी गुरु भाई श्री कौन खालसा पंथ नूं एकता सुभाग प्यारी बख्शिश करके सतनूं दास बख्शो चैनल ना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो हर मैदान जवान फतेह बख्शन की बात करो जी गुरु जी महाराज दूर दराज कर बैठी लाइव का तक शर्म कर रही हैं सारे संगतान की हाजिर प्रवान करो घड़ियां लिख लो तो तारा उन्हें बख्शिश की संगत उन्होंने बख्शे संगत आपके चैनल धन्यवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद माया ऑनलाइन गुरु घर न गुरु घर सेवा सिंह दास संगत माया पेटा कर चैनल प्रवान करो बख्शा साहब जमाइया सफल करो कर जवा दो तार साफ संगत दुभकामना पूरी करो जी हर मेहनत करो सेवा प्रवान करो पुनत माफी बख्शो पवित्र रूप नमी बख्शिश करके तार अपना लड़ी वास्ते अच पाठ करने वास्ते आके बख्शो शोधे पित्र सवाल की बात करो तार रहते पाठ का स्वागत चैनल तरह की बनाओ सही प्यारे मेरे जी ने मैंने आपका नाम दिता नानक नाम चढ़ी कला तेरे पाण वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दोहरा गया भई अकाल के तभी चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की ते जो प्रभ को मिल बोच है गोज शब्द में राज करेगा खालसा की रहे ना को क्वार हो ऐसा मिलेंगे बजे शरण जो वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे जो शरदा

की भज मिल साधु संगत जन की तार पौ जल अकथ कथा सुन हर की गोबिंद सत संगत मेलाए हर

सब दुख त्यागे, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लागे, बछरे प्रीत खीर मुख खाए, हृदय बिकसै दिखै माए, गुर सिख

सब रस मीठे मुख लगे, जा हर गुण गावे, हर जन परवार सधार है, इक ही कुल सब जगत छिड़ावे, जो किछ किया सो हर किया, हर की वडियाई, हर जी तेरे तू वरतदा, हर पूज कराई, हर भगत भंडार लहाए दा, आपे वरताई, लाला हाट विहाजिया, क्या तिस चतुराई।

रहाउ। लै तुरे सौदागरी सौदागर धावै, धन खट्टै आसा करै माया मोह वधावै। त्यों हर जन हर हर बोलता, हर बोल सुख पावै। बिख संचै हटवाणिया बह हाट कमाए, मोह झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए। त्यों हर

नित हर गुण गावे हर नाम समाए रहाव। नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजे अर्थ सब माया। कै बंध है कै डान ले कै नरपत मर जाया।

चौथा, कंचन नारी मह जीव लुभत है मोह मीठा माया, घर मंदिर घोड़े खुशी मन अन रस लाया, हर प्र

था। ज्यो जननी सुत जन पालती राखे नदर मझार, अंतर बाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार। त्यों सतगुर गुर सिख राखदा हर प्रीत प्यार, मेरे राम हम बारिक हर प्रभ के है याने। धन धन गुरु गुरु सतगुर पादा

मत कोई जान हो किसी कह किच हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत पासाप सब हर कह जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कह वस है कोई लाग न सके बिन हर का लाया।

सतगुर की सरनाई भज पौ मेरे मना, गुर सतगुर पीछे छुट्टी है रहाओ मेरे मन, सेवो सो प्रभ सर्ब सर्ब सुख दाता, मेरे मन सेवो सो प्रभ सर्ब सुख दाता, जित सेवे है निज घर वसी है, गुरमुख जाए लहो कर अपना, कस चंदन हर जस कसी है, मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम, ले लाहा हर मन हसी है, हर हर आप दया कर देवे ता अमृत हर रस चखी है, मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे, ते साकत नर जम कुटी है, ते साकत चोर जिना नाम विसारिया, मन तिनकै निकट न पिटी है, मेरे मन सेवो अलख निरंजन नर हर, जित सेवे लेखा छुट्टी है, जन नान

बहु साडे पर उपकार पुन बहु किया पौ दुत्तर तार पराडे जिनको प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गाडन गाडे ज्यो पानी कागत बिन सजात है त्यों मनमुख गर्भ गलाडे हम जानिया कछु न जान है आगे ज्यो हर राखे त्यो ठाडे हम भूल चूक गुर

पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडाहे, कर साधु अंजुलि पुन वड्डाहे, कर डंडौत पुन वड्डाहे। रहाउ साकत हर रस साध न जानिया, तिन अंतर हौ मैं कंडाहे। ज्यो ज्यो चल है चुभै दुख पावह, जमकाल सह है सिर डंडाहे। हर जन हर हर नाम सुमाने, दुख जन्म मरण भव खंडाहे। अविनाशी पुरख पाया।

था। इस गढ़ में हर राम राय है, किछ साध न पावे तीठा। हर दीन दयाल अनुग्रह किया, हर गुर सबदी चख डीठा। राम हर कीर्तन गुर लिव मीठा रहाओ, हर अगम अगोचर पार ब्रह्म है, मिल सतगुर लाग बसीठा। जिनका जिन गुर बचन सुखाने हियरे, तिन आगे आन परिठा। मनमुख हियरा अत कठोर है, तिन अंतर कार करिठा। बिसियर कौ बहु दूध पियाई है, बिख निकसे फूल फुलीठा। हर प्रभ आन मिला बहु गुरु साधु, कस गरुड़ शब्द मुख लीठा। जन नानक गुर के लाले गोले, लग संगत करुआ मीठा। गौड़ी पूर्वी महल्ला चौथा। हर हर अर्थ शरीर हम बेचिया, पूरे गुर कह आ गए। सतगुर दाता नाम दृढ़ाया, मुख मस्तक भाग सुभागे। राम गुरमत हर लिव लागे रहाओ, घट घट रमैया रमत राम राय। गुर शब्द गुरु लिव लागे, हो मन तन देवु काट गुरु कौ। मेरा भ्रम पौ गुर बचनी भागे, अंधियारे दीपक यान जलाए। गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बिनासियो। कर वस्त लही मन जागे, साकत बदिक माया धारी। तिन जम जोहन लागे, उन सतगुर आगे।

गुर मिलया पाप आप गवाया, गुर मिलया आप गवाया, हौ मैं रोग गया सुख पाया। धन धन गुरु हर राय।

जिन विछुड़िया हर गल लाया, मेरे अंतर प्रीत लगी देखन का, गुर हिरदे नाल दिखाया। सहज आनंद भया मन मूरै, गुर आगे आ

तही प्रकाश हमारा पहो पटना शहर बिखै पौलयो तन तन सहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सहब कमाल जिन्हों का प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है मना रहे हैं कलगीधर पिता जी जदों साहब जी का आना पटना की धरती से साहब जी का प्रकाश होया ते कहिंदे ने पीर भीखण सा जिहड़ा अंबाले के नजदीक बसदा है अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है नाल दे संगी साथी हैरान हन अज पीर जी नूं की हो गया है आपां वेंदे हां क्योंकि इह लहिंदे पासे नूं सिजदा करदे हां पर अज पीर भीखण साहिब बार बार सिजदा कर रहा है जदों नाल दे संगी साथियों ने पूछया पीर जी की गल ठीक हो अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे हो कहंदे ने जिसनू मैं सिजदा कर रहा हां इस दुनिया का मालक वो अज पटने की धरती ते उसने आना किया है कोई बंदगी वाली रूह जुड़ी हुई रूह जिसनू पता है जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नू मिलना है बंदगी तां आपां सारे करदे हां पर बंदगी इहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है नेड़ा है दूर ना जाने नित सारे संभाले नेड़ा है ना ही दूर ये तो एहो जी बख्शिश हो जाए पीर भीखण साहिब कहिंदे ने तीन महीने तकरीबन लगे ने तुर पए उस वक्त इतने साधन नहीं सन तुर के लोग की यात्रा करया करदे सन तुर पए तुरे जा रहे हन उस मालक दे कलगीधर पिता जी दे गुण गाउन दे जदों उत्थे पहुंचे दर्शनां दी इजाजत मंगी ते नाल कहिंदे ने दो कुजियां विच परखण लई वी कलगीधर पिता जी वल हथ वधाए ते दोवें कुजियां ते साहब जी ने हथ रखना किया कहे मैं सारे ए अवल अल्लह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन पले को मंदे ऐसे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु कलगीधर पिता जी बाल अवस्था विच उन्होंने निर्णय किया कि असी सारे संसार दे भले लई दोस्त दोखियन पकर पछारो हमरे सब बैरियन संघारो जिहड़ी बाणी लिखी है उसते नितरे ने दुष्ट दोखियां दा खात्मा कीता ते बाए गही की लाज अस गोबिंद दास तुहार साड़ी रखिया साड़ी लाज रखी हिंदुस्तान की लाज रखी भावे अपना सारा ही परिवार कुर्बान कर दिता दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनीमन गारे दीन आख दिन जिदा कोई आसरा ना हो साहिब नितानिया का तान आए ना जाई थिर सदा गुरसबदी सच जान कलगीधर पिता जी ने साडे लई
ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ।

परमेश्वर दित्ता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना परमेश्वर दित्ता बन्ना

जी की फतेह। बेनती है बच्ची दे परिवार नू कि ओ बच्चे दा पल्ला बच्ची नू पकड़ाउणगे, रागी सिंह नाल नाल पल्ले दे शब्द दा कीर्तन करनगे। बेनती है कि पल्ले दी रस्म अदा कीती जावे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मह सुख कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा सगल समगरी तुम रह सूत्र तारी तुम ते हो ऐसो

साहिब जीओ। जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछणया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। गौंड महला चौथा हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपता ज्यों त्रिखावंत बिन नीर

कबीर, हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपता, ज्यों त्रिखावंत बिन नीर, मेरे मन प्रेम लगो अर तीर।

0: मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत तीर। जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन सात शरीर। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत तीर। जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन सात शरीर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान्यो गुरु रूप साध संगत जी, आप जी वडभागी हो जो सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच इस खुशियां दे समय जुड़ बैठे हो। सो सब तो पहला दास अपने समुचे जत्थे वालों, गुरुद्वारा साहिब दे समुचे प्रबंध वालों, सुभाग जोड़ी भाई अमृतपाल सिंह जी अते बच्ची बीबी गुरमनप्रीत कौर अते उन्हां दे माता पिता समूह परिवार नूं लख लख वधाई देंदा है जो सतगुरां ने कृपा बख्शिश कीती है। इन्हां ने अज ग्रिश धर्म विच गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी का ओट आसरा लै करके प्रवेश किया है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी विच जिथे सारिया ही नातियां नूं बा खूबसूरती दे ढंग दे नाल निभाउण दी सतगुरां ने जाच जुगत दसी है, उत्थे खास करके पति और पति दे रिश्ते उपर सतगुरां ने बहुत विस्तार दे नाल जिथे दुनियावी रिश्ते नूं समझाण वास्ते सवारन वास्ते सतगुरां ने बेअंत दलीलां जुगतियां दित्तियां हन, उत्थे इसे रिश्ते राही सतगुरु दतार पिता महाराज जीवात्मा ते परमात्मा दी वी गल करदे ने भी उह अकाल पुरख वाहिगुरु साडा पति है, बाकी असीं सारियां जीवात्मा उस दीआं पत्नियां हाँ, उस दीआं औरतां हाँ, पर सारियां नूं उस अकाल पुरख वाहिगुरु की छोह प्राप्त नहीं हुंदी। सब सुहागण जिहड़ियां ने उह परमात्मा परमेश्वर दे दर ते परवान हुंदियां, उह सुहागणां जिहड़ियां वाहिगुरु दे हुक्म विच परमात्मा दे भाणे विच चलदियां ने। ते संसार दे नातियां नूं वी गुरु साहिब जी ने समझाया भी जिहड़ा पुराणी जिहड़ा जीव जिहड़ा सिख इस तरह निभांदा है, एक दूजे का हुक्म मन के एक दूजे की वारता मन के आपस में तालमेल रख के जदों सिख ते सिखनी सतगुरां दी बाणी दा ओट आसरा लै करके तुरदे हन, फिर जिंदगी ये जीवन सदा लई आनंदमई बन जाता है। सो आप दे चरणा विच ये बेनती है कि आप जी ने सदा ही धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की छत्र छाया विच रहना है, सतगुरां दे सिद्धांत नूं गुरु साहिब जी की बाणी नूं ही अपने जीवन का आधार मनना है। खुशी की गल है कि परिवार खास तौर पर काका अमृतपाल सिंह जी जो गुरसिख हैं चढ़ती कला वाले हैं, इन्हों का जथा सारे वीर भाई रणवीर सिंह जी, भाई हरप्रीत सिंह जी, भाई सतिंदर सिंह जी, सारे ही ये बड़ी चढ़ती कला के नाल बे एरिए जिथे भी गुरु घर जिते भी गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी की कृपा से सदका दस्तारां नूं सजाउण की गल आउंदी है, दस्तारां दी सिखलाई की गल आउंदी है। ते इह सारे वीर अमृतपाल समेत सारे ही बड़ी चढ़दी कला दे नाल चाह दे नाल इह सेवा निभाउंदे हन। सो असी इस गल का माण महसूस करते हाँ कि गुरु साहिब सच्चे पातशाह जिन्हां ते कृपा करन होर भी इसे तरह ये अपना योग गुरसिक्खी विच गुरु की सेवा विच पा सकन। आप दोहां ही परिवारां नूं एक वारी फिर लख लख वधाइयां दास दिंदा है। सो सब तो पहला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जो सुभाग जोड़ी नूं गुरु घर की बख्शिश है सिरोपाओ दिते जाणगे, नाल ही साडे पास दो बुलारे हन, सत्कारयोग सरदार दीप सिंह जी अते सत्कारयोग सरदार गुरमीत सिंह जी खालसा ट्रेसी गुरु घर तों पहुंचे हन। सो दोहां बुलारियां नूं दास जीवां आखता है। सब तो पहला मैं बेनती करांगा भाई दीप सिंह जी वह आ करके अपने विचार संगत दे विच रखन, ते उस तो बाद गुरमीत सिंह जी खालसा वह अपने विचार या इउं कह लईए भी सुभाग जोड़ी नूं असीस रूप विचों शब्द कहणगे। सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। आओ पहला सन्मान सुभाग जोड़ी का कर दी, उस तो बाद भाई साहब जी आप जी के नाल मुखातब होणगे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दतार जी आप जी का पावन पवित्र फरमान है, कल युग मैं कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए। ध्याना दे मां वाक अनुसार गरीब नवाज आप जी अपार बख्शिश रहमत करते हो। गुरु नानक खालसा स्कूल सच्चे पातशाह जी जो बड़े प्यार श्रद्धा भावना दे नाल समूह बच्चियां दी गुरबाणी कीर्तन तबले आदिक दे विच सच्चे पातशाह जी गुरमत दे प्रचार अते प्रसार विच उन्हां दे उस्ताद जन्ना वालों बड़ी तैयारी करवाई जांदी है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह इस वक्त आप जी के हजूर समूह बच्चे हाजिर हैं। आप जी के हजूरी विच समूह बच्चियां ने गरीब नवाज जो अपने उस्ताद जन्ना तो तालीम हासिल कीती है आप जी दी आसीसां लैण वास्ते समूह बच्चियां ने आप जी की हजूरी विच गुरबाणी कीर्तन तबला आदिक प्ले करना है। आप जी ने बच्चियां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना इसे तरह वध चढ़ के होर उत्साह प्रेम दे नाल अपनी बाणी नूं गायन करन दा आप जी की बाणी नूं पढ़न दा सेवा सिमरन दा आप जी ने बल उदम बख्शिश करना। बच्चियां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना परिवारां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना बच्चियां दे उस्ताद जना दे टीचरां दे सिर ते आप जी ने मेहर भरिया हथ रखना। गरीब नवाज चढ़दियां कला बख्शिश करके नवाजना। माता सुरिंदर कौर जी दी आप जी के चरण कमलां विखे अरदास है। आप जी ने कृपा करनी देह रुखता दी दात बख्शिश करके अपने चरणा दी प्रीत और प्रतीत बख्शिश करनी भै भावनी नाम दियां दातां बख्शिश करके नवाजना। स्वास स्वास अपना सिमरन करवाना सतगुरु जी रहमता करो। बच्चियां नूं गुरमत संगीत सच्चे पातशाह जी आरंभ करन दी आग्या बख्शिश करो। भुल चुक दी खिमा सही प्यारे मिलना जिन्हां मिले आप जी का नाम चेता वै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणी सरबत दा भला।

वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। मेरा नाम सरबजोत है। I'm gonna show you how to play dadra. The lapag is 2, 3 plus 3. Tali kali is

वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम गुरशान सिंह है। आज मैं कुंगा रूपक उदय पाक है 3+2+2 43 खाली 3।

0: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम हीरन सिंह। टुडे आई विल डू लूपक। इट हैज 7 बीट्स।
1: ताली खाली।
0: दस,
1: तीन,
0: तीन,
1: तीन, तीन,
0: ना,
1: तीन, तीन, ना, तीन, ना, तीन, ना,
0: तीन,
1: तीन, तीन, ना, तीन, ना,
0: दस

0: बोले सो निहास, बोले सो निहास। बोले सो निहास, बोले सो निहास। बच्चे सारे इतने एक ग्रुप फोटो कर लो, इतने आ जाओ सारे बच्चे, सारे इतने बैठे हैं, सारे आ जाओ। टीचर के नाल एक ग्रुप फोटो करो, आ जाओ उधर देखो। बहुत धन्यवाद सारे का। हुण सतसंग जी आप जी सन्मुख साडी सब ना वड्डी क्लास जिन्हां ने सारा साल स्टेज ते परफॉर्मेंस करन दी सिक्ख्या लई, बड़े सारे कीर्तन प्रोग्रामां दे विच बच्चों ने हिस्सा लिया, ते अज उन्होंने तुहानूं इंडिविजुअली जिस पहले बच्चे ग्रुप च कीते हन, इन्हां ने इस ग्रुप के बच्चों ने हर एक ने वखरा वखरा अपना जो बजाना है। सो टीचर ने उन्होंने दस्या होया भी की बजाना है, तो ये नाल ही टीचर इन्हों की ग्रेडिंग भी करे। तो बच्चों तुम्हें पता है सारे नू, तो थोड़ी ग्रेडिंग भी होएगी, तो फाइनल टेस्ट है इस साल का खालसा स्कूल दे। सो मैं बेनती करांगा उन्होंने टीचर भाई जुजाज सिंह जी नू कि बच्चों इस जो उन्होंने परफॉर्म करना है, जो बजाना वो बारे दसंगे। बच्चों ध्यान न सुनो, भाई जुजाज सिंह।
1: वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। जो ये क्लास हुण थोड़े सामने पेश कर जा रहे हैं, ये परफॉर्मेंस क्लास है जी। जिदा डायरेक्टर साहब हुण तुहानू दस चुके हैं, पिछले एक साल तो ये सारे बच्चे कीर्तन जथियां दे नाल बैठ के उन्हां नाल तैयारी करनी, उन्हां दे नाल बजाउणा, बस उन्हां दा ध्यान इस वल असीं बहुत एम्फसिस ला के इन्हां नूं बिठाया होया है पिछले एक साल तो। ये एडवांस्ड स्टूडेंट्स ने, ते अज सब तो पहली बार अपनी जिंदगी दे विच ओह इंडिविजुअल कल्ले बैठ के परफॉर्मेंस करनगे, ते उस परफॉर्मेंस की ग्रेडिंग उन्हां दा फाइनल स्कोर होवेगी। ये बच्चे थोनू दादरा ताल जो कि 6 मात्रा का है, 3 ताल जो कि 16 मात्रा का है, अते कैरवा जो कि 8 मात्रा का है, 3 थोनू ताल 5 मिनटां दे विच फाइनल परफॉर्मेंस दे विच थोनू पेश करनगे वारो वारी। तो हुण मैं बेनती करता हाँ कि ब्रह्मजोत सिंह जो कि साडा सब तो सीनियर स्टूडेंट है, उस स्टेज ते आ जावे। बच्चो तुसीं हुण बड़े ध्यान नाल सुनना है, थोड़ी वारी बस 5-5 मिनटां मगरों आनी है। सो पे अटेंशन एंड बेस्ट ऑफ लक, थोड़ी ये फाइनल परफॉर्मेंस है जी।

आगे मत सिंह आ जाओ। बोले सोनिहा। और अगला बच्चा हिम्मत सिंह, आप जी नो वही उत्साहित जड़े टीचर ने दस्या ने उन्होंने 5 मिनट बजाने लिये।

0: शिवकर जी मुझे बुलाओ, शिव करो।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।